से बोल रहे हैं कसम के 100.8 मेगाहर्ट्ज़। आज दिन सोमवार है, सितंबर 1948 से साक्षात माह

कश्मीर में तीन युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के

सजीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित पूनो राष्ट्र

में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के मारिजान स्टेट ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच बना लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 में

हैं और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान

कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सितारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सुनीता उजाले उनकी यादों की, रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3 बजे। 4 बजे आज शाम को सितारा सेहत घटनामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज आप सुनेंगे। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता सुधीर खान। छाया गीत ये आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर। तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का समय होता है शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का

पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। ₹45 पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संचार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एस एल संडारा। इसका भाग 5 आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं। प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूली बिस्से गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे के आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम से सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15

कुमार दास का है, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे रात 10 बजे खयाली आलेख एवं स्वर जयंत पाटीकर का प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र मेघी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम झलकी जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। श्रोताओं, गीत की रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे धोखा। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

अमुक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी। श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से घिरे पहचाना और फिर अपने डेरे वापस लौट आई। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ

पिता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने दिल्ली आए। उनका तापस देश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंदारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आप सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत संख्या के सभी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संस्कार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरु जी के मार्गदर्शन से

0: के और फिर मुड़े।
1: जी
0: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
1: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में जिन्हें चुने, जैसे लोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, देवानंद राव जोशी जी का कर चुके हैं, बी के दातार और एम राजन जी और सिटी कणागर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजन जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियाँ हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा और बाद में और एक महापुरुष की शिक्षा हुई है जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी गाकर गाते थे। उनके साथ मैंने भी बजाया, महादेव मिश्रा साहब के साथ मैंने दो तीन लोगों की संगत की, जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बैठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के। तो मेरा ये कहना कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजन जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी राजा जी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
0: एन राजन जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी,
1: प्रमुख थी,
0: और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में
1: उभरे
0: थे, तो कैसे थे वो दिन वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करता थी?
1: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो।
0: जी जी,
1: एन राजन जी, किशन महाराज, उदय महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी, कई सारे एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजन जी उन दिनों में मुझे वायलिन को उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं था, तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बहुत ही दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब के एन कृष्णन साहब, वो भी बहुत अच्छे वायलिन, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिन, और अभी इनकी बेटियाँ और नातिन वगैरह सब वायलिन बजाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की और इनका वायलिन वायलिन श्रोताओं को सुनवा
0: दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी, हम विदुषी

0: श्रोताओं, पंडित जी लगे हाथों राज यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राज यमन पहला राग है जो स्टूडेंट भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई हाथ नहीं पाए उन्होंने, और स्टूडेंट को भी हम लोग शुरुआत
0: राग से सीखाते हैं।
1: तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा माँ तीव्र लगता है और पादा नीचा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो है गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

मालूम पड़ता है ये स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं, हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग यमन की शक्ल है

0: की शक्ल बनती है। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए
1: जी जी और शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके
0: लिए थोड़ा सा बजा के बदलना।

0: बताऊं लता जी की आवाज में संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस एल कंडारा, जयंत पात्रीकर ने
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त किया।

0: che vende carvati o qualcosa che ti fa
1: un se ho più vita se mi riesce più la prima e già mi chiudo il calaudo ma troppo per me non da smerto per la ora ma rompe gra a mille gra nel vato di radio fa che tu rosal vajrahiti do java dino ka rom gurna chosti aur is ghazal ke saath saath meri ghazal ko radio station अभी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा हो गए
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं लोगों के साथ हम इस खूबियों में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है मुल्क के सभी गाने सुने थे क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और

0: और फर्स्ट ईयर में कहीं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का उपयोग कर रहा था, भाषा भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था। तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख भाषा हो
1: गई।

0: रचना लाला रुख स्पिन से मोहम्मद रफी की आवाज में चाची आदमी कालिका जी था और खयाम का संगीत। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे

गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। कमल जला आबादी कंठा गीत था, उसने लाल भगत का संगीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम भूले रिश्ते गीत में वक्त है एक छोटे से अंतर।

छोटे संतरा के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिखरे गीत में एक बार फिर से स्वागत है। इस अंतराल के पहले आपने गीत सुना अदले जहांगीर फिल्म से हुसन लाल भगत राम के संगीत से सजाई गीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अदले।

0: मती फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे थे भरत व्यास ने और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: इनकी बातें की मधुरता से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। इनके उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है। जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंभार के आंदोलन ने घुमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बनस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंभार में जब तक न मनाया जाए वो आप कह सकते हैं कि नहीं। उसमें मेहनत
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। मधुशील

फिल्म सेशन से ये गीत था भरत व्यास रचनाकार और गीतकार गीतकार भरत व्यास और संगीतकार हेमंत कुमार थे।

0: y
1: बोले रिश्ते की अब यही सम्पन्न हुआ।

बताओ, लेकर हाजिर है हम कार्यक्रम हम है रही प्यार से। आइए आपको सुना रहे हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मस्ताना फिल्म का गीत है, रचनाकार आनंद बख्शी है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत

0: मुखचित्रता जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आपको
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: हमारे पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून
2: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसने ये शकील अपना, जख्म क्यों में खाया हुआ पत्थरों को अंदर से डर पड़ा हुआ। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाथरूम में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां टूट गई और इस गजल के साथ साथ मेरी हमेशा रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा हो गया।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सुनाता हूँ। स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी समय की थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से चर्चा। ये गीत हर्ष जयपुरी ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम है गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में

0: साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी की गंगा के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बांस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंगा में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: इनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रोनू मजूमदार, सचिव सिंधा, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में

0: कर रही। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: थोड़ा अच्छा से मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता हूँ। आज भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख भाषा।
0: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हम ही रहे के आज के में स्वागत है। आज सब आपको सुनाते हैं सावन भादो फिल्म के इस गीत को, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने और सोनिक ओमी का संगीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गीत को गाया है।

प्रतिष्ठित प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन। उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।

0: समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आपके मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ भारती पर। एक
0: ओम पितृकार है, एक ओम
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राही। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरा अवस्था से मैं कहीं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, आश्चर्य में जानता था और मैं बहुत विनोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो
2: गई। सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ। हम जोली इस संस्कृत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखाई गीत, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे।

प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी, तोड़ ली सुनरिया तेरे में,

सुबह कूनों नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनों के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रगति का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनों नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनों में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।

मिला, वही स्मॉल टाउन को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर बॉल प्रदान किया गया। दी ओल्ड गुड नोट और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट सेंटर को विकसित भारत वंदे मातरम की 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर

अर्जेंट स्पोर्ट रिसोर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले डेली गेम्स ने कहा कि अब तक वापसी के उत्तम फलक परिणाम सामने आ गए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच

चलन बहुत तेजी से बढ़कर चल रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से विज्ञापन लोगों को

मौसम में पकवान बनते थे। गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम सब कुछ

0: वो जो घुटन है उस घुटन को दरवाजे के भंडार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: क्योंकि हर प्रस्तुति श्रोताओं को स्वरूप दे जाती है। पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सिंह, शास्त्रीय संगीत

também, de 10 a 7, 15 ou 4, 3 ou 4,

Tá tendo.

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का लोग इस कार्यक्रम के लिए अब जुड़ते हैं विविध राष्ट्रीय सेवा से।

पर आज के संचार ये कार्यक्रम सीढ़ी पर सुनना नहीं भूलिएगा। और अब वक्त है इस कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का,

0: था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां हो गई थी, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल थी। रेडियो स्टेशन का भी दख्ल है मेरे अंदर शायर पैदा हो गया।
1: वो है शायर और गीतकार शकीला से। इस मंगलवार फेब्रुवारी के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकीला से।
0: मुश्किल हालात पैदा किए थोड़ी थोड़ी रात में, और समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मेरे, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी समय की थी।
1: जून शाम 4 बजे विविध भारती पर आजम नश्री इस फिल्म का सुनने का मकसद घोषणा शुरू करो में पीयूष मिश्रा इसके गीतकार

0: लेकिन ऐसी जैसी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एसेसमेंट या डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों कम हो जाए।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकट उपचार है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की

मिकेली रम्या की आवाजों में इब्राहिम अश्क की रचना है राजीव रोशन का संगीत।

habrá por ser difícil. Viva, habrá por ser

के साथ आज का अतिथि लोक कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। डीजे आज पूजा नारायण।

पर मार्ग नई दिल्ली। अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीर

Father.

उन्होंने शौकी तौर पर रंगमंच शुरू किया।

प्रभावशाली करने के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान।

सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की या यूं कहिए कि विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी ही खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।

शर्तियां आपकी तरह एक फौजी होता, बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूँ ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूँ।

0: क्या करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बम्बई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 फिल्म परदेश, सुभाष घई की फिल्म ने अमरीश पुरी पर ये नगमा सुनाया।

0: पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।
1: लंबी लगा के रखना, दो लिंग लगा के

सन 1998 में इस फिल्म में भी

Film muss sich schon die

的

तो कार्यक्रम है आज है 22 जून और आज एक बेहद ही खूबसूरत दिन है, खूबसूरत और क्योंकि आज भी है दोस्तों इंटरनेशनल बीइंग्स यू डे। आज के दिन मनाया जाता है, एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया के इस भीड़ में हम खुद को न खो दें और इसी बात पर एक तेज आगे आ रहा है दोस्तों, खुद की तलाश में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है, खुद की तलाश में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है, जो खुद से मिले उसकी हर बिगड़ी सच करती है, जमाने के लिए तो रोज सबसे सवती होता है, खुद के लिए मुस्कुराओ, देखो जिंदगी कैसे दोस्तों हमेशा दूसरों को खुश रखने के प्रयास में हम स्वयं की भावनात्मक जरूरत धीरे धीरे अपने सपन और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है, इसलिए

हो तो आज का दिन किसी और के लिए नहीं सर, और इस खूबसूरत दिन पर आपको खुश रखने का प्रयास करें। वैसे तो पूरी जिंदगी आप दूसरों को खुश रखने में बिता देते हैं,

चाहे जो भी चाहे आपके बारे में आप खुद बिकाऊ खिलौना नहीं हो, तुम कुछ मुकम्मल हो बस हम आपको सुनवा रहे थे कर्म के यहाँ दोस्तों हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम में कमियां हैं, लेकिन असल में वो कमियां ही हमें दूसरों से अलग और नायाब बनाती हैं।

वैसे देखा जाए तो जिम्मेदारियां तो कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन इस वजह से अगर आप अपने शौक खत्म कर दें, आपको और ज्यादा परेशान और नाखुश बना सकता है।

आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत सीखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था आपके सामने। तो दोस्तों, आज के इंटरनेशनल डे पर मुस्कुराते हुए खुद से प्यार करते रहिए।

संस्कृत का एक श्लोक हम सभी को याद है, वृक्षारक्षण तो दीवान की, वृक्षारक्षण की जगह, वृक्षारक्षण से प्राण, वृक्ष

अगर दोस्तों आप सुबह उठकर ताजी हवा में एक लंबी सांस ले रहे हैं तो अपने आप को भाग्यवान समझिए, क्योंकि ये हमारी धरती के उन कोनों को याद दिलाती है जिन्हें हम वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट कहते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मना रहा है। दोस्तों आंखें बंद करके अगर हम देखें तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रिमझिम बरसती बारिश और मिट्टी की सौंध की खुशबू हो तो कितना सुकून मिलता है ना। देखकर ही ये सुन करके और आंखें बंद कर ये सोचने पर आज 22 जून हम विश्व वर्षा वन दिवस मना रहे हैं। उन घने जंगलों की जो हमारी इस धरती के अर्थ कहलाते हैं वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये जादुई जंगल। वर्षा वन यानी कि बहुत सारे पेड़ों का एक समूह, ये हमारी धरती के सबसे पुराने और सबसे जीवंत इकोसिस्टम है। वर्षा वन यानी वो घने जंगल जहाँ साल के 12 महीने भारी बारिश होती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये वर्षा वन हमारी पूरी पृथ्वी के प्रतिशत से ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां

ले रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इन जंगलों की बदौलत है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे आधुनिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले 25% जड़ी बूटियां भी इन्हीं वृक्षों से

वन यानी वो जंगल जहाँ साल भर बारिश होती है और ये जंगल पूरी धरती के लेकिन दुनिया के आधे से ज्यादा पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो है इन जंगलों में और ये पेड़ पौधे यहाँ के हमें 20% कुल ऑक्सीजन का हिस्सा जो है हमें प्रदान करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है दोस्तों कि हम इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए इन्हें बहुत तेजी से काट रहे हैं। हर मिनट में अगर ये वर्षा वन खत्म होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग इस कदर बढ़ेगी कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज का दिन सिर्फ सीधे

आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और आज इस सफर में मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त दिव्या। में खड़ी बोली रही थी आवाज से पुराने लहजों को फिर से दोस्तों हम आधुनिक युग के श्रेष्ठ दस काशी की पावन धरती पर जन्मे रत्नाकर जी ने अपनी लेखनी की ब्रज भाषा को वो चमक दी

पर जीवन में जो जपनी उपनाम थे उर्दू में वैसे और शायरी लिखा करती थी, लेकिन भारतचंद्र हरिश्चंद्र के प्रभाव और अपनी मातृभाषा के प्रति आज दिल में उन्हें जब भाषा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने जब भाषा को केवल अपनाया नहीं बल्कि उसका परिष्कार किया। उनके काव्य में एक ओर दरबारी संस्कृति का अनुशासन था तो दूसरी ओर आम जनमानस की गहरी समस्या थी। उन्होंने काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की और विकास में नाम दिया जाता है, उनकी अमर कृति उद्भव शतक हमारे जहन में पहुंच सकती है। गोपियों और उद्भव के बीच

是他的历史是如何被决定和发展的。我们请他来替我们说。प्रथम किसी ने साबित किया कि भाषा चाहे कितनी ही पुरानी हो, अगर उसमें भावों की सरलता और शब्दों का शिल्प हो तो वो हर युग के पाठक को आकर्षित कर सकती है। डिजिटल दौर में भी उनकी कविताएं हमें अपनी जड़ों और अपनी समृद्ध

जिन्होंने चट्टान पर

अमानवीय यातनाएं थी, उनकी हौसले को दिखाया थी। आज उनकी हम उनकी बहादुरी और राष्ट्र प्रेम को नमन करते हैं और इस

कुछ सिनेमा के दिन में बेहद खास आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसे सिर्फ एक कड़क आवाज और डरावनी आपके थिएटर में बैठे दर्शकों के पसीने छुड़ा देती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे शहीद फिल्म जगदम्बो, ठकुरायन और दिल वाले दुल्हनिया की बाबू जी यानी अमरीशपुरी साहब को। दोस्तों अमरीशपुरी साहब की वो कड़क आवाज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना लंबा सफर किया। पंजाब के नवा शहर में 22 जून 1932 को जन्मे अमरीश जी शुरुआत में हीरो उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई नौकरी की, साथ ही साथ थिएटर में अपनी कला को मानते रहे और फिर करीब 40

एक बार जैसे महान हॉलीवुड डायरेक्टर थे उनके मूवीज थे और उन्होंने अमरीश जी को देखा सबसे विलेन के रूप में तो उन्होंने राज किया ही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने एक कड़क मगर दिलदार पिता बाबू जी के रोल में खेला तो वो हर किसी की आंखें नम कर गया। ये डायलॉग तो आप सबको याद होगा, जा सिमरन जा, ही ले अपने

प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत नवीन सोहम का था और आवाजों की हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन आदि।

से सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि मुकेश के और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। लंदन में संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है

0: यादगार लम्हों और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। दिनेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली। कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी छोड़ ली।

0: पैदा कर दिए ज्यादा। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या इतना मुल्क से सभी जाने से मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली हरकत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर

देश की आवाज और शैलेंद्र के बोल सुनकर जय किशन के संगीत के साथ आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। ये गीत है चोरी चोरी फिल्म से जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: यात्रा हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में। बाकी इतनी दिलचस्प है, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। अखिलेश से एक बाकी, जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आप उसके मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आसाम में रिंग का उपयोग किया। आसमी मेरे अंदर था और मैं बहुत विमोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे दिन निकलते थे किसी मुद्दे पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको बड़ा अच्छा रंग बोल लेते हैं, मुझे मजे की बात है कि बाद में चल करके रंग मेरी पहुंच गई।

जैसे गायकन से अजीत मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: 是这里内部的还有。还是你们 impression， 还是这些是 based from the fact， 因为呢，我很关注。
1: Very important pillar of any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-sustainability a doctor? If teams is a little uncomfortable, then also काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: एक ही बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है hepatologist और gastroenterologist डॉक्टर गौरव मिश्र।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बात, 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परत सिंह का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल है और संगीतकार है।

करते हैं मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी की चिंता है संगीत। आप सुन रहे हैं यादव समस्ते और यादव की व्यक्ति के साथ संगीत। हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादव की महफिल के साथ। आगे दीजिए कार्यक्रम यादव की महफिल से मुझे।

सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवादी की सुरीली फिल्म। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहाँ पर हम भेजते हैं आपके पास एक हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत को कहते हैं कि कुछ शायरियाँ जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं उन शेरों को आज हमने संकलित किया और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर एक दो तीन चार कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच और उस के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ। और इबारत का पहला शेर है किसलिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किसलिए उम्मीदें वार रखते हैं, कृपा करते हैं वो लेकिन हम उन्हें प्यार करते हैं। और इबारत की तरफ बढ़ूं उससे पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम विरह खुशी दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं आज की भारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है जहाँ दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को फैलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शहराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के पानों तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम तन्हाई उम्मीद वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए। और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था। अपनी पसंदीदा शायरी अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात को और बताइए ये गायक कलाकार कौन है।

सुनने के गीत फिर वही दिल लाता हूँ। फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सुन। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की आवाज नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है, हमारे कुमारी और यहूदी इसमें काफी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा कि आपने उन्हें अपने पास लिख कर

संघर्ष को और उनका झारखंड वासियों को बच्ची जो समर्पण था उसको नवाजा और एक सम्मान दिया।

ब्रेस्ट वाकी जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रही, ये कल्याण बिक जाता था, बेटा बेटी को पढ़ाई छोड़ जाता था। आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड, देश भर के करोड़ों लोग आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं,

महसूस होता है, उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी पति प्रेयसी प्रेयस किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ पसंद अपन किया कहें तो हमारे साथ साझा कीजिएगा और हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे। पर उससे पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ भेजा है वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए जानों की नरम धुन और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के पायों से पड़ रहे कर सभी करवट लिए सर। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी से बात तेरा है कहाँ बदलती है तुम अपने

होती ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेरे हैं पसंद है, उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद से कभी हालत से रोना है, बात निकली तो हर बात से रोना है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाओ, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपसे बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए ही हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर पहली शायरी अपने पति पत्नी महबूब के लिए कब करी थी, तो और कौन सी करी थी वो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगले नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी सच्ची है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इससे आपने बता लिया कि फिल्म कभी कभी बहुत बढ़िया बात है, बस बताइएगा कि इससे संगीतकार कौन है।

से लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज में, सही ध्यान नीचे बोल रहा हूँ। आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने श्याम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियाँ हम तक पहुँचाई है। एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से जिंदगी को हमने आसान कर दिया, किसी से माफी मांगी, किसी को माफ कर दिया। हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगने को, कि फिर सही बार बार फूलों की बात है, आवारा फूलों की। ये बिल्कुल गलत अजीज की गजल, बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, जहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहें तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस एक बंद का ये शेर वो लिखा है। इसके साथ वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, मेरा जिस हाथ से फूल सीधा पाँव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है, सुरीला सफर हाथ में गर्म चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है कि बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश। लेकिन एक बात आपसे कहनी है, रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, अब कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियाँ हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियाँ हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।

0: साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हों और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।

गया मेरे बाजू में रेडियो का एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां थी, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा।

सुन रहे हैं सुविधा भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सुरीला सफर और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं देश और शैली के बारे में और आप बड़े अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर शायरी की बात हो रही है कि जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक यारा का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ गाने के पहले भी थे और अभी उनको पंछी याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक से कोई बात नहीं।

बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक यहाँ का तलत गीत तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी थे और अभी उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक से, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बसेरा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्म पत्नी से मिलना हुआ इसमें, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुँच नहीं पाएगा, रोमन में लिख रही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। सही श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल यौवन की हाला चितवन में मधुरी अंगों में ज्वाला सर सर चलती यू क्या प्याला गोरी तू लागे है पूरी दुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्ति आपने कही है। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से नींद चुभे शूल से और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे कारवा गुजर गया और हम गुबार। क्या बात है, जॉन एलियट की पंक्तियाँ लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ करेंगे कहने में कि जो भी खुश है हम उसे जलते हैं जो पकता है आसमान को तू कोई नहीं आसमान में क्या ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने और बढ़िया शायरी बनाई है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेरों शायरी दिल बहलाने का जरिया है, कहा लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात थोड़ी देर बात करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है। और आपसे हमने पूछा क्यों हो सकता है कि कोई बड़ी देश भक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर्यता की पंक्तियाँ कोई पंक्ति हो कविता में हो या फिर शायरी में हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास ने देखती है पंक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज को पहचानना क्योंकि आप बराबर ही सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज को पहचानिए और पहुंचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई

कैमरा हो जाए चलते ये गीत हरियाल की भूल भयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप हमने सही पहचाना सुमधुर आवाज ऐसा बोल लेती है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत खुश की बातें लिखी, उनको हम साझा करते हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं उन लोगों की कमी नहीं चाक पर, ये इससे थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद है गुलिस्ता करने को, बस एक उल्लू काफी है, पश्चात से उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि सबे फिराक उठे दिल में और कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूँ तेरी याद रक्त भर आई, क्या बात है। हमारी कोई श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 70वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन से सीजन टिकट कर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर, तुम्हें और क्या दो दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लग जाएगी, असल जयपुरी की पंक्तियाँ बोल रही थी, बिल्कुल सही है। हमारी कोई श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित है और वह उनका व्यवसाय देती है और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं। और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, कोई साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आपको बढ़िया कोई जबरदस्ती बड़ी जोरदार सी कोई बढ़िया सिंचाई दीजिए, जो एक बच्चे की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आत्मा में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबियत से उछा लेगा। बिल्कुल बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आप बरस रही है, पर लिखते हैं समय दिल शायदा न होने की वजह से गर्मी से जल रहा है।

छोड़ जाएगी चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, यश का नमक की मोहब्बत की चाशनी है तेरी, हम डूब रहे हैं मेरे प्रेम कहानी का अशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे श्रोता लिख रहे हैं उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो सबसे पूछा लो यार। हमारे हमारे श्रोता ने लिखे हैं दुष्यंत कुमार जी इन पंक्तियों को, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीज चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, रणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी हमारे श्रोता लिख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ये वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग सब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र योधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बस्ती है जीत की विनय की, संधि वचन हम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें तीर इज्जार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। मैं सोचा लिख रही है कि ऐसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेर व शायरी की बात के बारे में कह रही है कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों कवियत्रियों ने भी करा है कि कवि के दोहे बिहारी के दोहे गहरी के दोहे कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं। मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है सब में, बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गायन कितने, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा, और हजारों ख्वाहिश ऐसी हर ख्वाहिश के दम निकले वहाँ निकले मिले हमारा फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियाँ इस पत्ती के भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए।

पंक्तियों को मिर्जा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और सलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुँचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे ये लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा शिर से हमेशा झुका रहे इसके सम्मान है, यही दुआएं सकते हैं हिंदुस्तानी के दिल में रहती है। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया चीज लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाह की सपूत, मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाजी से जलो, प्रवीण हो जाए जयी बनो बड़ी चलो बड़ी चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदम खुदा आदमी खुदा नहीं, खुदा की नूर से आदमी

तो लौटते हैं, जो गए हुए हैं वो क्या खास लौटेंगे, है ना। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने जा रही है, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ, और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती है। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये जो फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो जरूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है,

dark anak manusia itu yang sudah hidup lama mengisir mukis atau tanpa wajahnya, tentu akan dibul oleh syaitan dari lalui sendiri sesudah wah. Orang yang kami itu tahu sendiri bukan lagi banyak peribadi yang harus kita pergi. Jiwa dasar khusus ini adalah ini sangat teragi. हमारी तो ना लिखते हैं कि यूँ लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी कहीं एक संतोष होता था शायद नजर बन गई है दर्द की रात बहने ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की संतोष आनंद की संतोष सुनता ये गीत उन्हें पसंद है और हमारे कई सारे श्रोताओं ने गीत को बहुत पसंद किया और हमारे श्रोताओं ने शहरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया यानी समझाया है उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है उसके लिए भी धन्यवाद हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ दो तो साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है तदवीर के हाथों से तकरीर बनानी है जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है हाँ इस बात को इसे इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया परंतु ये उसके वर्जन में थे उस गाने में थे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला ये गीत का उन्हें पसंद है कि जो देव को तसल्ली दे वह साज उठा लो दम घुटने से पहले आवाज उठा लो ये बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरील सफर आप सबके साथ रहा उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और आप सबका जीवन मंगलमय

0: कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बड़ा सुनिश्चित है वो जो घुटन है उस घुटन को दरबार के गंधार में जब तक न लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि नहीं
1: उनके हर व्यक्ति श्रोताओं को शुरू किया

अच्छे से खो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री

उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अरिकाल में भी दिन के बाद तेजी स्थिति रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसी हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है।

जबक कप्तान से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्र गुप्त के संगीत के साथ आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं।

की सेकंड लाइन सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। मनीष जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बनाई, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन

0: हालात पैदा कर दिए थे अनुभव के द्वारा। हम इस खूबियों में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से लिखते हैं क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के रेडियो धर्म सदाबहार नन्हे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नन्हे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने सुना है ससुराल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़, हसरत जयपुरी की है बोल और संगीतकार है शंकर जैसे।

में था और मैं बहुत विमोद किया करता था। तो स्वाभाविक रूप से मेरे दिन निकलते थे किसी मुद्दे पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको बात करने बोल लेते हैं। ये बड़ी मजे की बात है कि बाद में चल करके वे मेरी

सुनते हैं सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में जब प्यार किसी से होता है फिल्म से यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने, फसल जयपुरी के बोल संगीतकार

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में अच्छे से पूरी प्रिपोरेशन कर जयकिशन के संगीत के साथ आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन का संगीत।

जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। कराची में पत्रकारों से बातचीत में

समझ रहा है, मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहादुर गांव

इस दौरान दरवाजे बढ़ रहेगा। राज्य में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की गतिविधियाँ हो गई है। मौसम विज्ञान के राज्य में 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य सहित राज्य के प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 200

हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शूटिंग का ये होने जा रहा है। शूटिंग इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी बच्चों की संख्या में, इसीलिए 4 दिवसीय इसको किया गया। इसमें 4 दिन में करीब करीब 400 बच्चे।

गुनाह नहीं करी। तो दीपा आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी बिल्कुल अच्छे हैं और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को श्रोता भाइयों को मैं दीपा महेश्वरीता हेल्दी नमस्कार। क्या बात है हेल्दी इसलिए हम इसे बताते हैं कि कोई एक दिन जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सके और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें। बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, हमें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे के को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज गुड मॉर्निंग के जगह सबसे ये भी उसमें लगा दी कि आज योगा किया कि नहीं किया, सही तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी। हमें जितना भी आपके पास वक्त है, जो भी अच्छा नहीं है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए। बिल्कुल, और दीपा आज हमारी जो सखी सहेली के विषय है तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश के रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल, और देखो वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश शुरू हो। तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचना, तो उससे भी हम बात करेंगे और संदेश आए में हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर देते हैं। बिल्कुल, और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग चार। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज इसका चौथा भाग अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और एक गुंथा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो

कभी मुस्कुराहट कर जाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अंशनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बनाने। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं।

0: कर्नल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और शोक की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों से चिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। पाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई। मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और फरफरा गए। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में घिस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: तुमने इतनी सच की पहले पर मुझे खबर तक न दी।

0: पुत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
1: क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा ये चाहूंगी। तुमने मेरी दूसरी नाव पार लगा दी है। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी अभिजन का चौथा और अंतिम भाग।
2: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग सावक निश्चित हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को सवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब लक्ष्य से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गट्टी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, बाही के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुका कर पूछा, कितनी जल्दी सुनी? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अचला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर ये ज्योति वो अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट, उसके सिर में चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं चला। खत बुद्धि की हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर प्रसार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन बदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
3: अम्मा ये देखता क्या है?
4: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
3: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
4: अब वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने तो आना चाहिए होती ना, तो और आज घर में किसी को जीता ना पाते तो
3: बहुत अच्छा होता।
1: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
3: अब तो फूलों की सेज भी बिछी देखता हूँ।
1: तुम किसी के धागे के बिछाता हो?
2: विमल सिंह उस क्रोध से कांपता हुआ बोला।
3: अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आँखों में खून उतर कर चला आता है। मैंने इस खून कलंकिनी के लिए तीन सांस संयत करके तपस्या की है, उससे तो ईश्वर मिल जाता पर इसे ना पा सका।
2: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुष्ण हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
1: इन्होंने मुझे कौन से सोने की कौर खिला दी है जो इनकी घर कहूँ? यहाँ तो जैसे कंटा घर है वैसे ही विदेश। किसी की टूटी कौड़ी नहीं जानती

0: संध्या का समय था। सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिपका लिए और विपत्ति की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देख कर बोला,
1: आज के 30 बजे नाना तुम्हें साथ से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर झड़ों पानी पड़ गया। मन ने सोचा कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल

रोग बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर ऋषिदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसंद होता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी प्यार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्त नाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्यु देव विकल रहते हैं। मृता चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण शैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक ने उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। सातक स्वर में बोली,

0: चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
1: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जरवत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थी वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। इतना क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहाँ व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूँ। या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में काली जोया के जरूर मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहाँ से होते हुए जाइएगा। यहाँ से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिल प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेम में स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह खुले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आ कर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगी। ये बातें कोई सामान्य बातें न थी, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह से हो रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देती।
1: माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
0: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, वह क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गए। जीने को था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ पुस्तकें सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और फिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें और थी।

0: बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एसेसमेंट टू योर डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर मौजूद
0: देश की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो दीपा, हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।

सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो नवीन चित्र सत्र की जो शुरुआत की है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत या यूँ कहिए कि बच्चे आगे क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें कॉपी बैग बॉटल टिफिन जूते सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बच्चे किताबें कितना सब कुछ कठिन होगा है ना। लेकिन मिस उन्हें ये भी लगता है मिस बांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है, बिल्कुल जगह बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है जैसे वहाँ पर कैसा अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे।

जमीन, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाती है, बिल्कुल जगह बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है, जैसे वहाँ पर कैसा अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उन्हें नया माहौल होता है किसी बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहाँ पर देंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के भी थोड़ी सी दिक्कत से लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठ के ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े पीछेस हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया, अब गर्मी की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई हैं और जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं ओरेंसू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई की रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा की कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव का शुरुआत में रखना है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, नियम उनके ऊपर बन गए, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और जो उनकी दोस्तों की मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक के प्रति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच बच्चे बड़े फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई के पीछे बात है। क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियाँ होती हैं लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होगी और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई रास्ता नहीं रहता, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक की मदद हमें, बिल्कुल इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को। छोटे बच्चे जो हम अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनके उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। कि बच्चों को डराने के बजाय हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जितने भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सके। कि बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैक पैक करना, ये सारी तैयारियाँ करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर फ्री है या नहीं, ढीले है या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहाँ बड़े बच्चे हैं वहाँ उनको ये सब

0: के ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजों उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि बिल्कुल तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथ ही तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा। तो संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के, एक संदेश कहता है कि सभी शिक्षक सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत

0: में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करते थे करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी। लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण से इस तरह से इन्होंने बातें लिखी है। लेकिन देखा जाए दिखा तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियाँ करते थे जाने के लिए। मम्मी लोग कितनी तैयारियाँ करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, जो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था। लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
0: बिल्कुल, तो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराएं नहीं, और बल्कि अच्छे हम तो एक गीत सुना देते हैं। तो चलिए

0: साथ की वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो गई है और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियाबी लेकर आती है ना। काले बादल बहुत
1: तो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जो बारिश के फुहारे लेंगे और कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी है। लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब पीक जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। देखो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको तो उसके लिए कि ज्यादा तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आस पास पानी जमा मत होने दीजिए। हम साथ ही निकले हैं और साथ ही आपके अंदर घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं तो उन पानी को आप बदलते हैं हर दो दो दिन के तो बहुत अच्छा रहेगा जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। इन चीज का हमें ध्यान रखना है और एक

0: तो योगी से रुक गई होगी और बारिशों और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास के गमलों में पानी न जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और छोटे छोटे मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है। और हमारे छात्रों मच्छरों से बचाव, मच्छरों से बचाव गर्मी की सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा न होने दें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अपने जो आसपास की आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं। और जब भी सोए मच्छरदानी के को लगा करके आप सोए और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल, और साफ सफाई करो देखो विशेष ध्यान रखना होगा। कई हमारे सखियाँ होंगी जिनके घर में ऊपर छत है तो वहाँ पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि ये काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब फायर वगैरह रख दिया है या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी
0: मच्छर।
1: और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत से जाना और साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहाँ पे गंदा पानी होगा ही नहीं और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने के बाद भी जरूरी है। और शाम हो जैसे शाम होने लगे हमें घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दीजिए, बिल्कुल खिड़कियों में या दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगे कमरों में तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छर से
0: ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में ये मच्छर आ जाते हैं तब का उजाला रहता है, हमें लगता नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियाँ खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियाँ बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियाँ हैं तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियाँ भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ है भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो। और देखा इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए, अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं काले नीले दिखाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम इसकी सुन सकते हैं, इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने

फिर कुछ दिनों में झमाझम बारिश होगी। ऐसे में अगर साथ मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी उसके लिए, उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद जो सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगे रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसके लिए भी धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरी धनिया की चटनी। मीठी चटनी को बनानी होगी उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है मीठी धनिया, ये भी ऊपर से डाला जाएगा, और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सब सजाने के लिए हरा धनिया। तो ये हमारी सीखना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, तो स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई तो आपने रात भर रखी थी, उसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और सूखी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से।

अपने पेट में दो टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गर्म जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार किए अपने गर्म मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर ये सब हल्का हल्का वो रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरे धनिए से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए। और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं, हरी धनिया की धनिया की बढ़िया चटनी बनाइए, फिर मूली आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए तो आपके हरी धनिया के आलू

0: साथ मैंने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छे की वस्तु भी लेकर भेजी।
1: बिल्कुल।
0: तो और रस्सी की जो गंजी है उसको आप लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार बनेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए, खूब अच्छी इस तरह की रस्सी को बनाइए। तो विदा लेते हैं प्रोग्राम से सभी को, मंजीव वर्मा और दीपा महेश्वरी का।

एक व्यवस्था ने लोगों ने आरोपी जी भी इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने खुद को भी मौके पर पानी ओपन थे

0: कॉमन हो गया है। हर चौथा पांचवा मरीज ऐसे सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
1: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, तो मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखते हैं ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन रहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँव में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना

0: बॉडी के कई फंक्शन के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है, सबको नहीं किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम देता है।
1: तो इसके कारण क्या है डॉक्टर, जो फैटी लिवर होता है?
0: तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ की हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है, हम वेस्टर्नाइज डाइट को हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो हम सबने छोड़ दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंचता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है?
0: ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसके ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। मतलब अगर
1: हमें
0: सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है, अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, तो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 30 से ज्यादा हो तो मेरे रिस्क आपको सेट करके लेवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर इसकी सोनोग्राफी कराओ, कोई और काम भी कराओ, उसमें अगर लेवर दिखे और उसमें आयन की लेवर चाहती है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लेवर है। तो ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लेवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे OPD में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो दो मिनट के अंदर नुकसान है कि नहीं, तो अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह पे। अगर आपको चाहिए तो कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद भी है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि दो मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपके लिवर में खाली फैट है या फैट के साथ नुकसान है। इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: और सबसे बड़ी बात ये है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं।

0: जामिनला को में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बात आपसे बताए। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहाँ बिताया।
0: अच्छा,
1: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ एक पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
0: ये जो देश है
1: मेरा, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद।

0: ग्रेजुएशन किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो देखिए एमबीबीएस मैंने यहाँ से की बॉम्बे की थी, फिर वहाँ पे मेरे फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली वाले थे, फिर मैं वहाँ जाकर पहले अपना बेसिक एमडी मेडिसिन किया हमने वहाँ पे।

0: उसके रस्म रिवाज से देना बनवास कर जाएगा।
1: ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आकर दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर को जानते हैं और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। लगभग बात फैटी लिवर से हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है या कोई ऑपरेशन पर ही कुछ करना पड़ता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के बीच हम एक दवाई लिखते हैं। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़ी जाए उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम करता है इस तरह भी चाहे डाइट करो एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर दिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। तो ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। हम विटामिन ई देते थे एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए, उसके बाद और नई दवाई है इम्यून दवाई आई है जो हम देते हैं जिससे फैटी लिवर भी कम होता है लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाई अभी अप्रूव हुई है, एक साल चली हुई फिर करीब 6 महीने चली हुई है। आजकल जो सबसे अधिक दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है जो आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है और वो डिफरेंट बैड रीजन। तो देयर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर से देख के डॉक्टर एस है कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट खुद ऐसा अपने साथ गूगल करके दवाई ले लेते हैं, स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए क्योंकि उनमें कभी कभी भसम होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाई थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगर बिना दवाई के हो सकता है, मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3-6 हफ्ते का काम देता हूँ तो वेट लॉस करो, अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा आपका फैटी लिवर रिवर्स फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: तो डॉक्टर असल ये समस्या युवाओं में बढ़ रही है उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है और अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर की फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो जाती है?
0: बहुत सही कहते हैं, फैटी लिवर स्ट्रेस वो हैंडल आजकल मैं देखता हूँ पूरे जो पेशेंट आते हैं और फैमिली मेम्बर्स भी उनको 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ बैठे रहेंगे वजन बढ़ेगा एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूचता नहीं जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया और डाइट बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, उस सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, स्विगी ऑर्डर करिए, इंस्टा ऑर्डर करिए, 5 मिनट में घर पर आ गया खा लिया और काम खत्म। So all these can then lead to fatty liver, and then once fatty liver ho gaya, then fatty liver again is not the problem. But fatty liver agar aapko hai to kya hai ki aapko body mein aur problem hone ke chances hai, cholesterol, diabetes, heart disease, kidney disease, system weight se related hai, sab fat se related hai. So liver to bichara ek organ hai jo sab store kar raha hai, but uske effects sare organs ko ho sakte hai.
1: तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो भारतीय के फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं पूछा, तो मैं ही इसको पूछ रही हूँ अपनी तरफ से उन श्रोताओं की ओर से भी कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से क्या लिवर सोराइसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है तो इनमें से 2-3% लोगों को अगर वैसे लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन क्लोज टू 2 और 150 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर

0: very good number. बहुत लोगों ने सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है. लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ. थोड़ी ब्रेक होनी चाहिए. भाग नहीं था भाग वाला
1: गाना सुनते हैं. फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं. बेहतरीन गाना सुना है. सुनते हैं ये गाना और ये भाग लिखा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में. क्योंकि अगर डॉक्टर ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं तो कसरत कीजिए और भाग दें.

0: अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सिरोसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण है और किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ है। कभी कभी फैमिली मेम्बर नोटिस करता है कि आपकी पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पेट में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो क्या आपको लिवर काफ़ी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मल पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह, या ये बीमारी
1: दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसे हो सकती है अगर उनको कोई और कारण पता नहीं आ गया। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है, जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। बाकी लिवर मगर ऐसी बीमारी जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनसे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं। और एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो इरिवर्सिबल बीमारी होती है, आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। अगर आप इंडिया में देखा जाए तो बेटे जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेज में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी हुई है। इंडिया में फॉर सम रीजन हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c 3 डायबिटीज है, 3 से 7 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कहता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो हम दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मतलब उसकी चपेट में आए, इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: हाँ, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा खाने पर ध्यान दो, हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था बाघ मिल का भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल ये होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपने बॉडी को फिट रखना है। इसमें इंक्लूड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन पर जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी, या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज़्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज करते रहिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलत नहीं लोगों में कि

0: से पाचन की समस्या बढ़ती है। एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबसे, आपको अल्कोहल पीते हैं, तो जो सबसे बड़े भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा रसम नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियन में हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखें 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है। और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना ईजी है। इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा ईजी है डाइजेस्ट करना दैन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे एग हो गए, मीट हो गए, हम शाकाहारी तो नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी सोचा सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन

0: एक गाना सुनेगा उसका।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल के एग्जाम में सुना था जब मेरे टेंथ खत्म हुई थी, वो भी था वो सितंदर का गाना, वहाँ के हम सितंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना सुना है और सभी हमारी बातचीत से नहीं खा रहे हो। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहे।

0: गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए पूछते हैं। खुद ही देखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं विविध भारती से यही कार्यक्रम ड्रामा और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है आइडिया और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लिवर के बाद सबसे कॉमन अगर पेट की बीमारी है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जान पड़ताल कर लिए, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो उनका पेट दर्द कर रहा है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं पेट में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है यू नीड टू फाइंड आउट द स्टेप, ट्रीट द स्टेप और डाइट से थोड़ा ध्यान दो। अगर

0: होती है और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है वॉलंटियरिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: बिल्कुल, बहुत सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी में होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी चाहिए, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाए और छाती में जलन होती है, उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबके लिए तो हमको एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उससे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में ऐसा लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी एसिडिटी, हर एक बीमारी का, अगर लूज मोशन का एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन का एसिडिटी बोल देते हैं, एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।

0: करने के बाद हम जाना चाहते हैं कि लेकिन डॉक्टर कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, एसी वॉमिटिंग, तो ये क्या है?
1: हाँ, तो ये भी एक ऐसा पार्ट ऑफ एसिडिटी होगी जिसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है। तो जो हमारे खाने का पाइप होती है सॉफ्ट जिसको बोलते हैं और पाइप होता है उसके बीच में वाल्व होता है, उसी के लिए वाल्व लूज हो जाता है, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो चाहे ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुँह में आ गया, कभी कभी मुँह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खा हुआ लेट जो तो रात को उठना पड़ता है तो फिर खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है, तो इसको रीजर्जिटेशन बोलते हैं। मतलब जो पेट का खाना है जो पेट के नीचे जाना चाहिए वो अभी वापस खाने के पेट में आ गया है।
0: तो इसका किस तरह से
1: ट्रीटमेंट
0: किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम से खाओ, स्मॉल मील्स लो, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद पहले थोड़ा 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूँगा जो चीज़ आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं और एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आते हैं, खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल स्लीपिंग मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली वो लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट को, जैसे अगर खाना सके सब खाओ, खाना सके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने के पास छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है, खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाती है।

0: और डॉक्टर अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाई खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी करूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एक्सपायलोरी नाम का वायरस होता उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एक्सपायलोरी कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एक्सपायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं गर्ल के लिए, जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तो हम एक्सपायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्लड टेस्ट करके एक्सपायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एक्सपायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। पर जस्ट बिकॉज हमको एक्सपायलोरी मिला डज नॉट मीन कि दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले, सब टेस्ट के लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई ले लो।
0: तो इसका कुछ मतलब इसका
1: इलाज संभव होता है? दवा होती है तो शुरू करते हैं, अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम शॉर्ट ऑफ पेशेंट को फूड से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड फीवर होता है, कभी कभी फूड एलर्जी होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट को स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक का कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं
0: होगा, दोनों एक दूसरे को पूरक है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाता है।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, शाहरुख खान का एक गाना है,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाई खाई जाती है एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं दो दिन के गैस के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो पेशेंट भी कभी भी हमें दवाई देंगे तो हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए, कभी दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट को दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो लिमिट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो आपको दे देंगे दवाई, तो ये भारत के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते हो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं, विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो पेट के अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से वो नहीं।

0: लंबे देर तक लेने के लिए। तो शरीर में एक किडनी को भी अफेक्ट करता है। तो ये दवाई जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने साथ दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू। अगर आपको हमेशा जरूरत है तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, शादी पे जाने से पहले एक गोली लेते हो जाओ। सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: लेकिन वो आदत न डालने ये रहता है। और ये जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती है, ये जिस तरह की बीमारी का आदेशक है।
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज द इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। और इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेरी नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं रहता, उसको गैस्ट्रोपेरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया वो पेट में रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगर स्ट्रेस से भी हो सकती है एंजाइटी से वॉमिटिंग, किसी को पेट पर अल्सर हो सकता है, जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ पे खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना वगैरह चक के वॉमिट हो जाता है। लेकिन रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो ये तो थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को बस पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से।

0: मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी
1: हालात पैदा करने का हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या मुल्क के सभी गाने सुने क्योंकि वो फिल्म ही

एक मुस्कान नहीं बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है।

दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुख संध्या साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। गीतकार है सवानंद खिरखिरे, संगीतकार है शांतनु मोइत्रा और फिल्म का नाम है प्रेमिका।

लेट गया मेरे बाथरूम में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरी और इस गजल के साथ साथ

हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुझे, क्योंकि वो फिल्म ही

हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गाँव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में। बाकी इतनी दिलचस्प है कि आपको मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। एक बात की जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं।

खूबसूरत गजल आप सुन रहे थे चित्रा सिंह और इस गजल के साथ ही श्रोताओं

सुखविंदर सिंह और श्रद्धा पंडित ने। इब्राहिम आर्ट ने इस गाने को लिखा था और दर्ज बनाई थी सुखविंदर सिंह ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम विविध भारती की फिल्म से।

नाम का फिल्म का जिसका गाना भी हमने आपको सुना था। गाया था इस गाने को श्रेया घोषाल ने, और फिल्म बनाई थी सलीम सुलेमान ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम विविध भारती के जनशेष्टी।

सेरेमनीज या भाषा में ये शब्द इस शब्द का देखा जाना है। दीप लिखा था कॉस्ट सेरेमनीज में

在家里面干的多少？他说脏话，俺们这边就随便的，很多地方才干的。一般呢，就是干。

0: करके दंड निदान का भरोसा दिया।
1: एक ऐसी सरकार है जो भी गरीब की चिंता करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वांगीण विकास पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया है, यही सब को लेकर हम लोग आम नागरिकों तक जा रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं रामगढ़ आया हूँ, यहाँ पे मेरे स्थानीय लोगों से भी मुलाकात हुई है और जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी मुलाकात हुई है।
0: निवासियों को 7 एम्बुलेंस की सौगात

0: कैंसर काम है। माध्यमिक आचार्य युग के मामले में झारखंड उच्च जेएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक रंजन के अध्यक्षता आयोग को रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया। चौकी में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी उच्च मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। राज्य में संचालित नशा मुक्ति अभियान के निगम में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुराग के नेतृत्व में निगम अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति की। इसके बाद विस्तार मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप नगर आयुक्त किया जाएगा।
1: शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को पूरे देश को नशा मुक्त बनाना है। अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। इसके अलावा भी अन्य अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा,

fantástico.

0: बचने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन लोगों के पास पांच गाड़ी का चोरी मिला था और इन लोगों के निशानदेही पर चार गाड़ी हमको मिला था, वो भी चोरी हुआ है। और जिस यूज करके वो मोटरसाइकिल का चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल का जो लॉक खोल देते हैं, वो भी साधन हमको बरामद हो गया है।
1: और उस चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन हुआ। मरांग गोम से जयपाल सिंह मंडल स्टेडियम में सुबह से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारी ने बताया

अपने की खामी से जो एसएससी के हमारे जवाब सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में राजनीति कॉमर्स का

रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी जमशेदपुर का ये विविध भारत केंद्र है। एफएम के 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शांति का कुछ है।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा, इसलिए ये शकील अपना जख्म क्यों खाया हुआ, पत्थरों को अंदर पड़ा हुआ। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बातों में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझ में, और इस गजल के साथ साथ

0: मजबूर शायर और गीतकार शकील आज से
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे वो सुनाता हम इस खूबियों में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुझे क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी समय की थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे विविध भारती पर
2: अनुरोध। इस फिल्म का गीत सुनने किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मी।

0: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाए।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश सिंह,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज की मेहमान 24 जून शाम 4 बजे विविध भारती पर।
0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए। गीत के बोल लिखते हैं आनंद।

0: की दो जमा बीरों का हम दूरियां समझ और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है चाहे

0: में काम कर रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से लिखते क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी समय की थी।
1: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। महानगार है आनंद अपनी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना।

0: सवारी की दुकान बना हुआ है, आटे के कार्टून बने हुए
1: हैं। मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ। तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।

0: जी क्या सुबह सुबह सफाई या सुस्ती की बातों में बैठी हो? क्या जरा इस सोफे पर चिपका कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठ कर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो। फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है, देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से धोखा।
1: धोखा?
0: भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे
1: तो आराम किस वक्त करेंगे?
0: प्रभु तो लड़ा के धोखा किस लिए है, घर का सुख कैसे किसे?
1: बोलो बोलो बोलो।
0: हाँ अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और

0: 个人来提，啊，这怎么这么
1: 巧啊？对嘛，你什么情况？
0: 你说，脑壳里还干净净的，你要面积不或者不面不准？
1: 哪来的？想起来以后。
0: Good morning, Daddy.
1: Oh, good morning, Mr. Williams.
0: Daddy, आज बड़ा मजा आया
1: था। हाँ, मुझे भी।
0: मौसम बहुत अच्छा
1: है। हाँ, यहाँ भी।
0: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई
1: थी। हाँ, हाँ।
0: किसके साथ?
1: किसके साथ?
0: मुझे वो मैं मतलब है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: बोलो, बोलो।
1: चलो नहीं बेटे,
0: बोलो।
1: हाँ, वो
0: हाँ, हाँ।
1: और Daddy
0: कौन है वो?
1: Daddy
0: बहुत अच्छी लड़की है। एक बड़े सरकारी अफसर की नौकरी देती है।
1: अच्छा मकान है, नौकर है, चाचा जी
0: और
1: डैडी खूबसूरत है,
0: बड़ी
1: लिखी है और बहुत ही मिलनसार। आज की सोसाइटी की है, इसमें घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती।
0: और
1: ना घर में कुछ आरोप है? हाँ, अभी कभी की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम जाकर मॉडल खरीदा और उसने जंजिया क्या खरीदा
0: क्या
1: मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती।
0: मगर Daddy हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
1: क्या बताऊँ,
0: हमारा घर तो बिल्कुल बेदख है,
1: अगर उनका घर
0: सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं छूट कर चल रहा था
1: रख
0: रखाओ ऐसा कि बस वाह टेस्ट रहेगा, हर चीज हर वक्त सही में सजी हुई, हर कोना टेस्ट का। लेकिन हमारा घर
2: ये सब तुम्हारे घर की क्या कसूर है? मुझे तो रसोई की फिक्र नहीं है, इनकी वजह से।
0: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रसोई नाम तो नहीं है।
2: अरे हाँ रसोई से याद आया,
0: मैंने कहा उसकी
2: माँ वो एक कप चाय दे भगवान।
0: Daddy मैं कह रहा था कि अगर कभी शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा Daddy, वो कभी सिर में कदम भी ना रखेगी वो। अरे देखना तो बेटा किसका फोन है,
1: देखता हूँ Daddy।
0: हेलो,
1: ओ शोभा,
0: हेलो,
1: हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ।
0: हाँ
1: हाँ
0: क्या
1: अभी पंद्रह मिनट में?
0: मगर
1: शोभा सुना तो

0: सारा घर कबा खाना बना हुआ है। अगर चौहान ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
1: मगर वो
0: क्या तस्वीर की जान दिखा रहे हैं? उठे ना प्लीज, हाथ का जाइए और शेर दीजिए। अब शेर दीजिए और कपड़े पहनिए। क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बना रहेंगे?
1: अरे तो मगर मगर कुछ नहीं,
0: ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है।

0: 先生でもう全然みんなから言
1: え。うん。そういう現実の場所で、あ、なんかそれで、あ、マミマミ先生先生のどうこれ何です。
0: あ、マミ、いや、いやだと。
1: は、
0: いざいざいざ
1: は、
0: え、いつ来た。
1: は、
0: あ、じゃりアップインケさ。
1: ああ、マイカルミ、マイカルミ。
0: 大丈夫。
1: ああ、いやは、
0: ベリーコール、ベリーコール。
1: ああ、見つんだより
0: は、
1: まだ
0: に、
1: まだに、まだに、まだに、
0: まだに、まだに、
1: ふあれに、よりよりは、え、いやかくよ。
0: え、して、いよばかくないよ。
1: はい。
0: あまり、まみにあっよりよりよりよりよりよりよりよりよ
1: りよりよりよ
0: りよりよ
1: りよりより
0: よりよ
1: りより
0: よりより
1: よりよりよりよりより
0: よりよりよりよ
1: りよりよりよりよりよりより
0: うわ、じゃあしゃんだってやりふう
1: おかしいの毎日からだったんだよ
0: やりふ
1: う、最初はある
0: あら、あぶら
1: あぶらあ
0: ぶらあぶらあぶらあぶら
2: なにだめ、मैं इस पर तुम रुक सकती एक सही में के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई
0: थी नहीं नहीं छोड़ा ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही
2: होगा कौन रमेश इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती तुम कभी कभी ओके बाय
0: मगर मगर सुनो तो सुहा सुहा गई जरी
1: वो
0: आज रात देकर चली गई
1: और उसने अंदर
0: मगर वो
1: मैंने पाउडर से उसकी तकलीफ लगाया पसीना पसीना होते हुए भी फूट फूट पहना और उसे क्या तक नहीं दिखाई
0: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी कर रहा मेरा एक मोहम्मद बिल्कुल पागल हो जाऊंगा मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है हमारा बिगड़ा जा रहा है
1: कुछ ना कुछ सवाल ही तो है
0: मेरे जैसा बात देते हैं
1: मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना
2: छोड़िए जी जो होना था तो हो गया है अब फिर से आराम कर लीजिए
1: हाँ जरूर करूँगा आराम और पहले की तरह ही खुले बदन खुले लिबास लांगे पसार कर और सोफा लगा रखा था
0: माफ करना मम्मी मैंने आपको नाहक परेशान किया अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो
2: अच्छा
1: बेटा नहीं पड़ा रहा है सोफे पर अब वो कहाँ है मेरा मेरा ख्वाब तुझे दिखते हैं मैं इसी तरह ही बखेर के रखूंगा ऐसे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह से लाऊंगा मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए और रसोई से वो जूठे बर्तन भी उठा लो हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ अब बिल्कुल पहली हालत घर की

0: पटवाने दरवाजे पर
1: अच्छा दादी
2: है इतना घबरा क्यों गए?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं मेरे बस
2: तुम हाँ मैं क्यों कोई अचार है
1: बिल्कुल

0: आप लोग इतने घबराए
1: क्यों
0: हैं? मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
1: हाँ हाँ देखिए यहाँ बैठो,
0: शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ कितना आराम है यहाँ, कितना सुख। हाँ कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठे हो ना, खड़े क्यों
1: हो? तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
0: और भी अभी घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर न हो कोई अजायब घर हो। नौकर है जो सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना। कभी बैठने लगो तो यहाँ न बैठना बेटा अभी सीख लिया है, कभी लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी अभी सिलवटे दुरुस्त की है, अंदर जाने लगो तो अरे रे रे इधर नहीं आना शोभा रानी अभी सफाई की है, कुछ उठाने लगो मैजिक हो जाएगी। उठते बैठते सोते जाते इन सौ सेंटीमीटर का हिसाब है हमारे घर
1: घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के
0: लिए। इस पोजीशन में नहीं बैठो सारी खराब हो जाएगी, चेहरे ना लेटो कपड़ों की चेहरे खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे, झगड़ा हो गया मिलके ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी,

करती राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन हर लम्हा हर पल आपके साथ कार्यक्रम चित्रलोक आप

आज कार्यक्रम प्रलोक सभी सुनने वालों को सभा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन। उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गाँव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। ज्यादा समय आप अपने

है जो हुआ इसलिए सही लगा जख्म क्यों में खाया हुआ पत्थरों को अंदर पत्थर पैदा हुआ। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाथरूम में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिनों का गम दूरियां और इस गजल के साथ साथ

शहर और ही चार सकी रात में इन हालात पैदा कर दिए थे अनुभव से लगता है। हम इस स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इतनी सब ऐसी थी।

स्वागत है। यह राष्ट्रीय सेवा जगत भारती। आइए सुने अगला गीत अभी भी सपना मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: अपने प्रिय गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे आज फिर से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।

कुछ थोड़ा सा रौबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा बड़ा प्यारा शरीफ, तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पहले दिया। नसीर ने कहा वो देखो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना सुन लो।

महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पश्चिम महाल, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।

आपको लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमरीका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है ताहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मन की।

मिल गया। मेरे बातों में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझ ली। और इस गजल के साथ साथ

कैसे की बात है मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे हम लोग हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही

0: मुझे याद है कि जब रामाशेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी जादू की इस कार्यक्रम में जाने वाले अभिनेता सदाशिव

रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत।

पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमगार है असद भोपाली, संगीतकार है रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था।

पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने चौकी के तौर पर रंगमंच

सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने

0: के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलेन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।

तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होगा। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूँ ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहद

की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बम्बई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेदों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल लगा करके।

0: आने वाली कुल्हानियां ले जाएंगी। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।
1: मेहंदी लगा के रखना तो लीजा जाके

पूरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद निहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी

जहाज की फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिका भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी और

वो हमदम, ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहाँ जाएं हम।

है नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात, नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ